0: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: रेडियो सैलून सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलून समाचार को सहयात्री।

0: बीमा को लाभ दिए आफ्नो कमाईको लाभ लिने मौका आज बनाऊ सानिमा रिलायंस लाइफ इंसुरेंस को बीमा अभिकर्ता सानिमा रिलायंस लाइफ इंसुरेंस खुले जियौ।
1: यो रेडियो सैलुङ को समय सूचक हो।
2: यति बेला साँझको 5 बजेको छ।

0: मेरुदेश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट
1: सामुदायिक पहुँचका लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।
2: अब बाजे प्रसंग।

नमस्कार रेडियो सैलन सामुदायिक एफएम 92.7 MHz बाट म बद्र प्रसाद सापकोट आज विक्रम संवत 2083 सा शुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष सन 2026 जून 17 तारीख आषाढ़ 3 गते बुधवार तृतीय तिथि अब स्तुति करूं आयु द्रोण कुमार कैसरी हो साक्षेण कल्पय भरी।